विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सतीयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरन्तकारी भानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रस्वनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु।

सबको खरीदा कैशबैक तथा सोर्स ऑफ गिफ्ट वॉशिंग मशीन में छोटे से एनियल मैजिक डिश वॉशर में वॉशिंग टैबलेट एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर अधिकतम मात्रा भाई समय ईएमआई मार्फत खरीद करना सकता।

0: ग्रेटर भी आ गया दौलत।
1: कौन?
0: पता नहीं, डॉर्पी की गाड़ी चला रहा था, मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू साला मुफ्त में सुना है, मत देख उसको।

0: 你好。
1: 三一零三零四三。阿姨你读书过别的字。2 billion。चितवन राष्ट्रीय निकुंज कार्यालय को सार्वजनिक अनुरोध वन्य जंतु को शिकार करने पकड़ने पालने ओसार पसार तथा वन्य जंतु को कुने अंग बेच बिखन करने जस्ता कानून ने निषेध गरेका कार्य

साझा चौबिसको घटना भागचोड बन्द गर्न सरकारलाई कंग्रेसको चेतावना, छानबिनका लागि तत्काल नियोग आयोग गठन गर्न सभापति थापाको माग, एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पद त्याग्न दबाव जारी, सचिवालय बैठकबाट सुसुमन बुबा लिन नेताहरूको सुझाव, बन्द चौसँगको छोटो व्यापारिक नाका ओलाङचुङ बोला संचालनमा 40 वर्ष पुरानो भन्सार भवन जीर्ण, बीपी राजमार्ग अन्तर्गत 400 बेसी खण्डको मुख्य ट्र्याक तयार, 10 दिनभित्र सवारी साधन चल्ने, केटा कपड़ा उद्योग पुनः संचालन को तैयारी, उद्योग मंत्री यादव द्वारा स्थलगत निरीक्षण, नेपाल टेलीकम को 4G 750 स्थानीय पहरा विस्तार, माथिलो डेल्टा को छारका पंगसुंग पहले पटक पुगे, चीन को कोईलाखानी में विस्फोट में पड़े 90 मजदूर को मृत्यु, उद्धार कार्य जारी, अमेरिकी ग्रीन कार्ड आवेदन में कड़ाई और निवेदन बिना आपके देश फर्कन्न पर्ने, महिला भलीबल चैंपियनशिप में आज नेपाल किर्गिस्तान भेड़े पहले जितने कारण नेपाल को योजना।

सफाई और मैं सुंदर मुंचा रेडियो साइलेंस 89.1 मेगाहर्ट्ज़ आमा मीठो खाना भी नहीं था अभी बाबा ने बाबा ने पास में लेने आया था।

0: पापी की गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है। चल चल चल चल चल चल।